मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। तोर जन्मदिन है, तोर सालगिरह है, अब खाए त्राव, तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, या किसी का मुंड संस्कार है। उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फोर मार होने तोरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl।

बिन कोट रावल तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है सुन वालों, तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 59 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

हमारे सभी सुनने वाले को हर को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे आज शुक्रवार 15 तारीख मई का प्रोग्राम। हमसे पहले प्रोग्राम को बना रही थी आरजे रशिदे, थैंक यू आरजे। यहाँ से लेकर ठीक 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो इनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से भी खोले जाएंगे, जहां का फोन का नंबर है 9390999 पर आप लोग तार कर सके हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को प्यार से दुआर से स्वागत कर रहा हूं। ऐ खुद मोर खलमा, इट इज फ्राइडे वीकेंड। करीबन 10 मिनट व्यतीत हो चुकल है 9:03 ऊपर नीचे। वेलकम आलमा, एक बेंदर तो 12 फंदा या तो। चलिए प्रोग्राम को आरंभ करते हैं एक सुंदर सा भजन के साथ आप सभी सुनने वालों के लिए।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं, ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहाँ पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से लड़कन गणपत सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार को 71 साल के आयु में एनजीफंतख यार औत लड़कन रॉबर्टो गणपत सिंह त्रेसी गणपत सिंह और स्वर्गीय साधना गणपत सिंह के माँ रोमाना और अमीरा के नानी परीक्षा की आजी अम्स्टरडम जैतो उसकी रहने वाली विधवा बिसुंदे छोटकन के मृत्यु आईएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। त्रेस के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री रॉबी गणपत सिंह के विधवा थे। अम्स्टरडम से लड़कन गणपत सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए सोमवार को 71 साल के आयु में एनजीफंतख यार औत रॉबर्टो गणपत सिंह त्रेसी गणपत सिंह और स्वर्गीय साधना गणपत सिंह के माँ रोमाना और अमीरा के नानी परीक्षा के आजी अम्स्टरडम जैतोस की रहने वाली विधवा बिसुंदे छोटकन की मृत्यु आईएमसी हॉस्पिटल में हो गई है। त्रेस के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री रॉबी गणपत सिंह के विधवा थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज शुक्रवार की रात में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। फनाफन फन हालफ जीफन तो थालफाख Uitvaart Centrum Westgaarde, Cape Moerdalei, ook Meerweg, 275 Amsterdam Oostdorp mee. अर्थी के दाह क्रिया आने वाले इतवार के दिन में 1:30 बजे जोंदा खानस्तांद 1:30 किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। ये सूचना है कि निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार छुटकन और परिवार गणपत सिंह के दुख में शामिल है।

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

और जी में आता है कि जी भर के तुम्हें प्यार करूं, फिल्म ठोकड़ का गीत। और आप सुने मोहम्मद रफी साहब से, इसी फिल्म ठोकड़ से निकाला हुआ एक और गीत आप सुनेंगे मुकेश जी से, और ये उजाला रेडियो है।

प्रोग्राम में सुनेंगे कुमार सानू जी के जरिए अलका याग्निक भी साथ देंगे कि तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। उजाला रेडियो है ये, तू जाने है तो

उजाला रेडियो दे अबे प्लस पे देश भर में सुनाई देते हैं, तू बता दे सबको इसे बताते हैं, ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

कल शनिचर 16 तारीख मई को बोधग्राफ के रहने वाले दुल्हे राजा वेस्ली आकाश गोपी और रोतदम के रहने वाली दुल्हरानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार होने वाले हैं। खुशी के मौके पर मामा अनिता हरकून एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा के लिए, दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए, सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ प्यार दुलार के साथ फरमाइश की गए। वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं। खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए, डेमियन डीन शाया एंड डेली की तरफ से मामू के लिए बधाई शुभकामना प्यार दुलार के साथ पेश करें सुनिया।

बौद्ध ग्राम के रहने वाले दूल्हे राजा वेस्ली आकाश गोपी एंड रोटरडम के रहने वाली दुल्हनानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाले खुशी के मौके पर दूल्हे राजा वेस्ली आकाश गोपी अपनी प्यारी प्यारी ब्यूटी क्वीन दुल्हनानी सुरागनी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ धमाको फरमाश के वेस्ली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार कल है। खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भैया के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश करें।

बौद्धग्राफ किरेनीवाला है वैसली आकाश गोपी एंड रोतदम किरेनीवाली दुल्हनानी सुहागनी जंगी के विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दुलार के साथ फरमाइश के वैसली आकाश गोपी एंड सुहागनी जंगी के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं। खुशी के मौके पर इस खुशी के मौके पर फरमाइश कर रहे हैं सुन वालों मामा अनीता हर किसुन एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा के वास्ते दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए और सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाइयां शुभकामना प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

ग्राफ के रहने वाला है और वो भी खासकर दूल्हे राजा वेस्ली आकाश गोपी और रोहतोदम की रहने वाली दुल्हन रानी सुरागिनी जंगी की विवाह संस्कार कल बड़ी धूमधाम के साथ होने वाला है। खुशी के मौके पर मामा अनीता हरकिसुन एंड पापा जैरी गोपी प्यार प्यार बेटा के लिए, दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए और सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के प्रोग्राम में वैसली आकाश गोपी एंड सुरागिनी जंगी की विवाह संस्कार कल होने वाला है बड़ी धूमधाम के साथ। खुशी के मौके पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए डेमियन डीन शाया एंड डेली मामू के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार कल होने वाला है 16 मई को खुशी के मौके पर दूल्हे राजा वैसली आकाश गोपी अपनी प्यारी प्यारी होने वाली दुल्हन रानी सुरागनी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नगमा को फरमाश किए। इस बार डेमियन डीन शाया एंड डेली प्यार प्यारा मामू वैसली आकाश गोपी के लिए नगमा को फरमाश करे, जिनकर विवाह संस्कार कल होने वाला है। रोटरडम के रहने वाली सुरागनी जंगी के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नगमा पेश किया जा रहा है। नाम डेमियन डीन शाया एंड वैसली की तरफ से मामू के लिए प्यार दुलार के साथ।

0: बहुत खराब के रहने वाली वेस्ली आकाश गोपी एंड दुल्हनानी सुरागनी जगनिकी के विवाह संस्कार 7-16 मई को होने वाला है। खुशी के मौके पर लड़कन डेमियन डीन शाया एंड डेली मामू के लिए पेश किए दुल्हराजा आकाश या कहे वेस्ली आकाश गोपी एंड दुल्हनानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार कल होने वाला है। खुशी के मौके पर बधाइयां और शुभकामना पेश किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि इस जोड़ी को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और जब तक जिंदगी रहे आप दोनों साथ साथ में रहे। बधाई हो।
1: ये लड़का है
0: उजाला रेडियो के जरिए। बाकी की फरमाइश आप सुन लेना, बाकी की फरमाइश ना तो कमर्शियल ब्रेक जरूर सुन लेना। परिवार गोपी परिवार जंगी दोनों परिवार को जो कल मिलने को जा रहे हैं बहुत बहुत बधाइयां शुभकामना पेश है।

नमस्कार, उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में फरमाइश हम जाहिर कर रहे हैं वैसलिया काश गोपी एंड सुरागनी जंगी के वास्ते। कल इन दोनों के विवाह संस्कार होने वाले हैं और इस विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर इस बार नहमा को फरमाइश कर रहे हैं मामू रॉय चैन सुख प्यारा प्यारा बेटा के वास्ते बधाइयां शुभकामना और प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ।

Idols. नीचे 16 तारीख मई को वैसली आकाश गोपी एंड दुल्हन रानी सुरागनी जंग के विवाह संस्कार है। इस खुशी के मौके पर मामू रॉय चैंगसुक प्यारा प्यारा बेटा के वास्ते बधाइयां शुभकामना प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ फरमाइश के। वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार कल होने वाले हैं। खुशी के मौके पर नाहमा को फरमाइश करे हैं मामा अनीता हर किसुन एंड पापा जेरी गोपी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बधाइयां शुभकामनाएं आशीर्वाद के साथ शुभकामना के साथ पेश किया जा रहा है।

ग्राफ के रहने वाले दुल्हे राजा वैसली आकाश गोपी एंड रोटरडम के रहने वाली दुल्हनानी सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार है। खुशी के मौके पर बहना दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश की है। वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार कल है। खुशी के मौके पर दूल्हे राजा वैसली आकाश गोपी अपनी प्यारी प्यारी ब्यूटी क्वीन सुरागनी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज कर रहे हैं।

कल जबकि शनिचर 16 तारीख में है तो बोधग्राफ के रहने वाला वैसली आकाश गोपी और रोतदम के रहने वाली सुरागनी जंगी के विवाह संस्कार हैं। खुशी के मौके पर दूल्हे राजा वैसली अपनी प्यार प्यारी होने वाली दुल्हनरानी सुरागनी के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश के। वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी की विवाह संस्कार कल है खुशी के मौके पर। इस बार फरमाइश करे हैं प्रोग्राम में दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए डेमियन दीन शाया एंड डेली मामू के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश है।

कल जबकि संजय 16 तारीख में है, 6 दिन में है, तो बोधगया के रहने वाला है वैसली आकाश, गोपी का विवाह संस्कार है, और रोटरडम के रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के साथ विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए डेमियन दीन शाया एंड डेली मामू के लिए बड़े प्यार मोहब्बत के साथ नवा को फरमाइश के। यू आर उजाला रेडियो, यहाँ सुनवाल और प्रोग्राम में फरमाइश जारी किया जा रहा है, और भी खासकर परिवार गोपी के वास्ते। कल जबकि शनिचर है और कल बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संस्कार होने वाला है बौद्ध खराफ के रहने वाला वैसली आकाश गोपी का, रोटरडम के रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के साथ विवाह संस्कार के खुशी के मौके पर। मामा अनीता हर किशोर ए पापा जेरी गोपी प्यार प्यारा बेटा के लिए, दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए, सभी लड़कन की तरफ से मामू के लिए बधाइयां शुभकामना प्यार दुलार के साथ पेश है।

जबकि शनिचर है तो कल बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि कल विवाह संस्कार होने वाला है और भी खासकर विवाह संस्कार होने वाला है बौद्ध खराफ के रहने वाला है दुल राजा वैसली आकाश गोपिका और रोटरडम की रहने वाली दुल्हनानी सुरागनी जंगी के साथ विवाह संस्कार के खुशी के मौके पर मामा अनिता हरकिशन एंड पापा जैरी गोपी प्यार प्यार बेटा के लिए दीदी करिश्मा गोपी छोटा भाई के लिए सभी लड़कियों की तरफ से मामू के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ

आखिरी फरमाइश आज के प्रोग्राम में हम ला रहे हैं वैसली आकाश गोपी एंड सुरागनी जंगी के वास्ते। इन दोनों के विवाह संस्कार कल होने वाला है खुशी के मौके पर। दूल्हे राजा वैसली आकाश गोपी और दुल्हन रानी सुरागनी जंगी एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, दिलो जान के साथ फरमाइश करें।

Raúl, जबकि शनिचर है 16 तारीख मई को तो बोध ग्राफ के रहने वाले दूल्हे राजा वैसली आकाश गोपी का विवाह संस्कार होने वाला है। रोटरडम की रहने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के साथ विवाह संस्कार के पृष्ठ पर एक दूसरे के लिए दिलो जान से प्यार और मोहब्बत के साथ ये नहमा को फरमाइश किए। परिवार गोपी आज के बाद से फरमाइश को हम रोक देते हैं। कल के प्रोग्राम में बाकी के फरमाइश दिन में 12 बजे से लाया जाएगा, जरूर सुन लेना। आज के बाद से एक शुभ रात्रि शुभ शाम समस्त परिवार गोपी समस्त परिवार जंगी को ये विवाह संस्कार बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई

0: उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।
1: जिया ना भाव।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदना उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियो जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ